0: सर्पयान के अंधकार आम भाग अन्न ये असुत आत्मा वाले भले भाग अन्न
1: वेले कबाकर
0: खाती हाला हेतली आनी हम आला थले बिने ई खाती हाले हम आला थले आले खाती हाला हे के थले बिना बाहने हेतले सेल वसुत बाला खड़ा रवानी बाहे मेने ले थेमा खाती लाले सोए नवतल दिन असुत बाला येशु स्वांस के नाम में फले आओ ई हमाला के थियाले हमा थिली
1: वे दे दे रवाहिरा हालेलुया
0: हितेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माथिलिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी इन बात से ओबान सी उदाउ कराने के ने